0: नहीं नहीं नहीं नहीं फिल्मों में लड़की ऐसा नहीं करती
1: फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली
0: से अदा के साथ डांस करके
2: नहीं
1: 11:26 p.m.

जिंसी डोले वो दिल वाले पैर मना ले लहरा के बोले है। ये लंबी चोटी ना गिनती डोले वो दिल वाले पैर मना ले लहरा के बोले। ओ लेकिन हम है वो दीवाने जो ना हार किसी से माने अपने।

तू ठुमके हाय कंगना खनक उठे झूमेरे झुमके चले जो इटलाती राहों में मार के तू ठुमके काम की बात कहूँ तू सुन ले एक अच्छा सा साथी चुन ले दुश्मन रूप के हाथ

0: है, जाके चुप जा तू वहां जहां तेरी अम्मा है।
1: आ आ इधर तू आ आ
0: जा जा घर तू जा जा।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

चंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की डनव जय जय सीताराम। आप लोग आराम बैठिए, सत्कम बटा प्री ऑल ऑफ यू।

भैया, पिछले हनुमान जी भगवान श्री राम प्रभु की डिवोटी, दे आर बोथ ऑलमोस्ट इक्वल. रिमेंबर बिफोर आई कंटिन्यू, व्हेन हनुमान जी ब्रॉट हिज सजीवन लीफ टू सेव लक्ष्मण जी इन बैटल फील्ड, व्हाट श्री राम सेड, सर हनुमान जी लव यू एज आई लव भरत भैया, all of my own brother, I love you equally as much. Equally as much.

हरे भाई. यू नो द माउंटेंस ऑफ लाइफ, माउंटेंस आर मेनी रॉक्स एंड पेबल्स एंड डस्ट, रॉक्स एंड पेबल्स एंड डस्ट, बट फ्यू जेम्स लाइक योरसेल्फ. वो जेम्स भगवान श्री राम डिवोटीज, यू विल नॉट सेव एवरीबॉडी, एटलीस्ट शाइन इन योरसेल्फ.

हनुमान की जय। बोलो श्री अयोध्यापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। शरणम एवरीवन, प्लीज हैव योर सीट। आसन दीजिए। अभी सेट अवर माइंड, ध्यान अपॉन दैट लॉर्ड रामायण सुमिरन, ऑल अवर ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स वी हैव दैट सुमिरन। And we meditate, first of all, Tulsidas tells us, may Bhagwan Ganesh, Lord of Shiva, tend us. By merely thinking upon whom success is won, please be auspicious unto me, Prabhu. He whose very face is that of a noble elephant is a storehouse of wisdom and abode of all good quality. We call upon you, Bhagwan Ganesh, to give us knowledge and understanding.